0: देख ना
1: अहिले हाम्रो गर्नेमा 8 बजेको छ
2: इस समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
3: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
2: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल राख्नुस् है।

0: सुनोस ना, आइले हम लोग आने में एक बजे के छा
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे चुड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में उना को लाइन में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

हजुर, कार्यक्रम को क्रम में राखी यह छोटो व्यापारिक विश्राम संगे स्वागत करद कार्यक्रम का विशेषा भाग में यहां मज आज हम कार्यक्रम का विशेषा भाग को बुधवार व्यवसाय में छौ। बुधवार व्यवसाय में रहे सुमधुर खाल का फरक नामले बजार में उपलब्ध भैया भाका सालैजो एकलैलो भाका झ्याउरे भाका थाड़ भाका लगायत का भाका कार्यक्रम में स्थान दिदै तपाईहरुसँगै सहयात्रा करने चमर्क में जुटी रहेका छौ। यति बेला को क्रम में हमी अर्क भाका जोड़छौ। सोही भाका संगे हमी पुनः पास होने नई छौ। यहां हमी संगे रहनुहोला।

एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंजा।

0: पहले हम लोग ग्यारह बजे के
1: इस समय को साथ में जितू सुनचा दी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।